हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 अगस्त

सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। स्वागत आप सभी श्रोताओं का

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहने अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सबसे पहले समूह स्वर में मातृवंदना।

डॉक्टर ललित मोहन के गीत और संगीत निर्देशन में ये मातृवंदना समूह स्वर में आपने सुनी। आइए अब आपको सुनवाती हैं गणेश वंदना, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, वाणी जयराम और साथियों के स्वर।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये रचना संत मीराबाई की।

लता मंगेशकर के स्वर में संत मीराबाई की इस रचना के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे बस कुछ ही पलों में यानी 6:30 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम सुनवाएंगे 6:40 से। सुबह हमारा दैनिक वैचारिक क्रम होगा 7:00। कृषि चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कृषि संकेत सुनेगा 7:05 से। मन चाय गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:20 से। गांधी चर्चा आप सुनेंगे 7:45 पर। और बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनते हैं 8:15 पर। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे नाटक एक पेड़ एक बच्चा एक परिवार। लेखक होंगे मलार कोडली सुकुमारन और प्रस्तुति होगी सुदर्शन कुमार की। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे 9:00 से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यादों का कारवा। श्रोता, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:05 से और हमारे आज के मेहमान होंगे सेवानिवृत्त शिक्षक मिलिंद देवस्कर जी और इनसे बातचीत करेंगे जय शेखर। समय पुनः सुन लीजिए, सुबह 10:05। आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 11:00 से और 11:30 से हम रिले करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दोपहर 2:00 फिल्म संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले करेंगे। 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे आप सुनेंगे और संगीत सरिता कार्यक्रम 5:35 से होगा। शाम 6:30 पर होंगे कुछ सदाबहार गीत। लोक रंग कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 6:45। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ और 7:30 से ग्राम सभा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा 8:00 और 8:20 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 9:00 आनंद लीजिएगा अपने फरमाइश के कुछ फिल्मी गीतों का, कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत।

0: का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर

0: इन्हें आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम विवरण आपने सुना आकाशवाणी सागर से। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वरधर रविंद्र साठे का। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, रक्षाबंधन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन केवल कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार नहीं है श्रोताओं, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, सम्मान और अपनत्व को महसूस करने का अवसर है। राखी का धागा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें बचपन की यादें, साथ बिताए पल और एक दूसरे के प्रति स्नेह की पूरी दुनिया समाई होती है। श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की पहली प्रस्तुति है लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अनपढ़ फिल्म से। शब्दकार हैं राजा मेहंदी अली खां और इस गीत को संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोता, भाई बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें नोक झोंक भी होती है और गहरा अपनापन भी होता है। कभी छोटी सी बात पर लड़ाई तो कभी बिना कहे एक दूसरे की मदद, यही इस रिश्ते को खास बनाता है। आइए सुनते हैं रेशम की डोरी फिल्म से ये गीत। सुमन कल्याण पर और साथियों के स्वर हैं शब्दकार इंदिवर और इस गीत को संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओ, आज के समय में जब रिश्ते व्यस्तताओं के कारण दूर होते जा रहे हैं, रक्षाबंधन पर्व हमें फिर से करीब आने का अवसर देता है। राखी का धागा हमें सिखाता है कि जीवन कितना भी बदल जाए, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, सच्चे रिश्तों में एक दूसरे के लिए जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7 बजे हैं। सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम। हमारा वैचारिक क्रम सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुबह में स्वीकारें चंचल का नमस्कार। आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पर्व, भाई बहन के अटूट प्रेम विश्वास के इस पर्व रक्षाबंधन की असीम शुभकामनाएं। श्रोता, इस रक्षाबंधन बहनें भाइयों को केवल राखी न बांधे बल्कि एक संकल्प भी लें कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की खुशियों में खुश होंगे और कठिन समय में एक दूसरे का हौसला बनेंगे। कार्यक्रम सुबह सुबह है तो बातचीत होगी वैचारिक भी। आज हम बात करते हैं स्थिरता की। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमेशा ऐसे लोगों से सलाह लीजिए श्रोताओं, जो आपके शुभ चिंतक हों। नकारात्मक बातों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि श्रोताओं, गहराई हमेशा स्थिरता मांगती है। जैसे किसी शांत झील में ही आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही स्थिर जीवन में ही मन स्वयं को स्पष्ट देख पाता है। लगातार परिवर्तन मन को बाहर की ओर भटकाए रखता है, जबकि स्थिरता उसे भीतर की ओर ले जाती है। और नकारात्मक बातों और लोगों से दूर रहकर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। श्रोता, एक बार की बात है, एक इंसान पहाड़ की दुर्गम चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पीछे से कुछ लोग चिल्लाने लगे, ऊपर मत चढ़ो, ये पहाड़ी चढ़ना असंभव है। आज तक कोई वहां ऊपर की चोटी तक नहीं पहुंच पाया, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। मगर वह व्यक्ति रुका नहीं और उस खतरनाक पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सुन नहीं सकता था और सारे लोगों को चिल्लाते देखकर उसे ये एहसास हुआ कि लोग उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। श्रोताओं, इस घटना को सुनाने का मतलब बस इतना ही है कि वह स्थिरता से, विश्वास से अपने लक्ष्य पर टिका रहा, लोगों की परवाह किए बगैर। अब यहाँ हम ऐसा भी बोल सकते हैं श्रोताओं कि अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बधिर बन जाइए, जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि श्रोताओं, अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों के बीच में दूसरों के विचार मत आने दीजिए, क्योंकि लोग आपकी काबिलियत को भी अपनी असफलताओं के चश्मे से मापते हैं। कहते हैं रिश्ते हमेशा सिर्फ रिश्तों से नहीं चलते, कई बार सहयोग से भी चल जाते हैं। कुछ लोग अनजाने में सहयोग कर देते हैं बिना बात किए। ऐसे ही निस्वार्थ सहयोगियों के संपर्क में रहें, सफल रहें, लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमेशा अग्रसर रहें। अंत में इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीजिए अनुमति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएम।

0: माई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी सागर का प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कृषि संकेत कार्यक्रम में उद्यानिकी फसलों की जानकारी। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर के एस यादव।
1: किसान भाइयों नमस्कार। देखिए किसान भाई, खास करके उद्यानिकी फसल के बारे में आते हैं। जो भी संकर किस्में हैं, खास करके भटा है, टमाटर है, मिर्ची है इनकी, और प्याज है। प्याज में खास करके नासिक रेट जो है उसकी जो है थरहा या रोपा जो है आप जरूर तैयार कर लें। रोपा तैयार करने के लिए इन, चूँकि बीज तो उपचारित होते हैं, पर जहां आप 1x3 की जो है क्यारियां बना लें, 15 सेंटीमीटर ऊंची बना लें और उसमें जो है ट्राइकोडर्मा मिला लें, करीब 1 स्क्वायर मीटर क्यारी में 100 ग्राम के हिसाब से, और नहीं तो कैप्टान या थायरम या कापर ऑक्सीक्लोराइड से जो है उसका उपचार कर लें, और तदनुसार जो है छींटने के बजाय लाइन से जो इसमें रोपा तैयार करें, क्योंकि एक एक बीज का काफ़ी महत्व होता है। दूसरी ओर किसान भाई, खास करके जो नए फलदार पौधे लगाए होंगे उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें घास फूस जो है काफ़ी मात्रा में हो गए होंगे। अगर आपके बगीचे 4-5 साल के हैं तो उसमें, और जो छोटे बगीचे हैं उसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग की पद्धति, ट्रेनिंग में किसान भाई आप खास करके अगर कई 3-4 शाखाएं निकल गई हैं तो उसको नीचे से जो है आप कटिंग छटिंग करके कापर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का छिड़काव करें, और तने को जो है अगर मान लीजिए 2 फीट का हो गया हो 60 सेंटीमीटर, तो ऊपर से आप उसको ऊपर से काट दें, जिससे कि ये गांठ है उसके ठीक 4 अंगुल ऊपर से काटें, नीचे से 3-4 शाखाएं निकलेंगी और उन्हीं शाखाओं को प्रमोट करें। आंवला में खास करके ग्राफ्टेड या कलमी आंवला जो है शिकायत ज़्यादा होती है कि बाद में जो है मर जाता है, तो जहाँ से उसकी कलम निकलती है उसी शाखा को ऊपर रखें, बाकी सारी जो देसी शाखाएँ हैं नीचे से निकलती उनको काटते रहें। आम में भी यही काम करें। दूसरा, खरपतवार अगर ज़्यादा है तो बड़ा बगीचा है आपका, तो अगर 5 साल से ऊपर का पौधा है या छोटे पौधों में भी ग्लाइफोसेट नाम की जो दवा आती है, ग्लाइफोसेट की जो मात्रा है वो करीब, या पैराक्वाट की आप मात्रा लेते हैं तो 100 ml प्रति पंप में डालें, 100 ml प्रति पंप, और 100 ग्राम अगर यूरिया मिला लेते हैं उसमें तो उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता, परंतु ऐसे खेत में ही छिड़कें क्योंकि ये सभी को मार देगा, चाहे फसल हो उसमें चाहे खरपतवार हो, तो बड़ा सावधानी से छिड़कें। बहुत अगर छोटा पौधा है आपका तो अगर आप संभव हो सके तो दोनों ओर पॉलीथीन लगा लें, जिससे पौधा बीच में हो जाए और इसके बाद जो एक छिड़काव बीच में कर देते हैं तो बहुत सहज ढंग से जो है आपके खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं, और उसमें आप जुताई गुड़ाई निराई करके जो है खाद उर्वरक डालेंगे तो आपको पौधों को भी मिलेगा। और आम में खास करके किसान भाई जो है सितंबर के महीने में, अनिवार्य रूप से सितंबर अक्टूबर में संस्तुत खाद उर्वरक की मात्रा जरूर डालें, जिससे उनको आगे फलन मिल सके। इससे 10 से 15 दिन के भीतर जो है आपके घास फूस जो है मर जाएगी, फलस्वरूप आप ट्रैक्टर से उसकी गुड़ाई निराई करके और इसमें इंटरक्रॉपिंग या अंतरासस्यन के रूप में सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं। तब तक आपकी जो है भटा, टमाटर, मिर्ची या गोभी आपको लेना है तो रेज बेड बना लें और उस पर जो है ड्रिप के माध्यम से जो है ये तैयारी करें। ठीक इसी तरह से आप गेंदा का, चूँकि समय आ गया है, गलाडिया का समय आ गया है, तो इनकी भी आप थरहा डालें, खास करके पछेती गोभी जो स्नोबॉल ग्रुप की हैं उनकी थरहा आप डाल सकते हैं, जो बाद में आपको दिसंबर के बाद जो है इसके फूल मिलने लगेंगे, काफ़ी अच्छा पैसा जो इससे भी मिल जाता है। तो अब उद्यानिकी फसलों में खास करके ये तैयारी किसान भाई हमारे यहाँ, आलू जो है खास करके जरूर लगाएं किसान भाई, अभी से तैयारी कर लें, और आलू जो है अगेती जो फसलें हैं जो 90 दिन में निकल के आ जाती है, 75 से 90 दिन में, ऐसे आलू की किस्मों का भी उपयोग करें, और नहीं तो फिर अक्टूबर में जो है इसकी तैयारी करें।
2: 9:30 पर खेल जगत कार्यक्रम होगा।
0: उद्यानिकी फसलों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग, इस विषय पर कृषि संकेत कार्यक्रम आप सुन रहे थे और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर के एस यादव। कार्यक्रम कृषि संकेत आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 7:10 होने को है, अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के दौरे पर। देशभर में रक्षाबंधन का पर्व, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा मंजूर और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हुए, 59 करोड़ से अधिक खाते खुले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक जाएंगे और 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर को लेकर भारत की प्राथमिकताएं रखेंगे। देशभर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार भाई बहन के साथ साथ परिवार, मित्रों और समाज में स्नेह, सम्मान और पारस्परिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और परम्परा का प्राचीन और अभिन्न हिस्सा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसे भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से रक्षाबंधन पर भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और महिला सशक्तिकरण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण पूर्णिमा पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी अर्पित की गई। इसे पुजारी परिवार की महिलाओं ने तैयार किया है। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोरपंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुण को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र तक ऐसा तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े अभियान की जरूरत बताई और कहा यह भी पहचानना जरूरी है कि बच्चा किस खेल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। वहीं प्रदेश के 110 से ज्यादा महाविद्यालयों में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में मूंग खरीदी फसल बीमा व्यवस्था की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए पहले से स्वीकृत मात्रा के अलावा 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मूंग खरीदने की अनुमति दी है। इससे राज्य में मूंग की कुल स्वीकृत खरीदी 5,39,072 मीट्रिक टन हो गई है। अब तक 5,33,000 मीट्रिक टन से अधिक मूंग खरीदी की जा चुकी है।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर में T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का कल भूमि पूजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में करीब 472 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की। यहां हर साल 80 टैंकों की जांच, बड़ी मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड किया जा सकेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश के रक्षा उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में करीब 46,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन अब बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपए और रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को दिखाती है।
2: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल रात समत्व भवन में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में अधोसंरचना, साफ सफाई, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने से शिक्षकों की उपस्थिति 95% तक पहुंची है। पिछले 2 वर्षों में समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 125 करोड़ विद्यार्थियों को 696 करोड़ रुपये ऑनलाइन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल बालाघाट में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार शनिवार को पूरे प्रदेश में जन विश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी होगा। अभियान के दौरान सभी जिलों में सरकारी आवासीय स्कूल, आश्रम और छात्रावासों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रदेश के वन विभाग ने विदिशा जिले के काकपुर क्षेत्र को काकपुर पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी अधिसूचना जारी की है। करीब 53 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में वन्य पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाएगा। काकपुर क्षेत्र बेतवा और बाही नदियों के बीच स्थित है और यहाँ मौजूद प्राचीन तालाब बड़ी संख्या में पक्षियों को आकर्षित करता है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में खेले गए 5वें-6वें स्थान के मुकाबले में भारत की ओर से इशिका ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने 1974 के बाद विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और टीम को 5वां स्थान मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत देश के हर बैंक रहित वयस्क को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 3,16,514 करोड़ रुपये से अधिक जमा है। इनमें करीब 78% खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में है, जबकि 56% से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खातों में औसत जमा राशि बढ़कर 5,356 रुपए हो गई है। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सीधी, कटनी, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने टिमरनी प्रधानमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में

भाग लिया। शिवपुरी सर्किल जेल में आज रक्षाबंधन पर बंदियों से खुली मुलाकात होगी। खंडवा में 30 अगस्त को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर लगाया जाएगा। मंदसौर में कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसठ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। मंडला के बीजा डांडी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कल शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के दौरे पर। देशभर में रक्षाबंधन का पर्व। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा मंजूर। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, 59 करोड़ से अधिक खाते खुले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत कार्यक्रम मन चाहे गीत में। स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश इन श्रोताओं की, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, भानुप्रिया, अनुराग मोहन, वारणा शाहपुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, अंकिता चौहान और अनिकेत चौहान, कल्याण मुंबई से डॉक्टर सूरज सुर्वे, नमिता प्रकाश सुर्वे, धायरी बड़गांव पुणे से विजय कामले, बिबी शौर्य, श्रेयस अंकिता कामले, रमाबाई कॉलोनी घाटकोपर मुंबई से वैभव चौहान, आभीर भीमराव और सुजाता चौहान। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं चंबल की कसम फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर ने।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम आप आकाशवाणी सागर से सुन रहे हैं। अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं के अनुरोध पर। बूढ़ चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका, आकृति, वंशराज सिंह, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त परिवार, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी किशोर कुमार ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अगले गीत की फरमाइश हमसे की इन श्रोताओं ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, कवर कॉलोनी बड़वा खरगोन से प्रवीण माली, मीना माली, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं काजल फिल्म से ये गीत आशा भोंसले के स्वर में।

और श्रोताओ, अगले गीत का भी अनुरोध हमें व्हाट्सएप पर ही प्राप्त हुआ। आप सभी श्रोता हैं बक्सर बिहार से, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित और रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्ताना। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करेंगे और सुनवाएंगे किशोर कुमार और आशा भोंसले के स्वर में अंधा कानून फिल्म से ये गीत।

आशा भोंसले के स्वर में वंदनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मेन मार्केट ढाना से भगवान दास, नामदेव, गिरीश, ओम, गौरी, गुड्डू, चौराहा, सतीश, रामू, शिवम, मोनू, हर्ष, लक्ष, राजकुमार, अर्पित, नामदेव, विजय उपाध्याय, नन्ने भाई सेन, भीकम सिंह, मगन लाल, नामदेव, मेलबारा, अशोक चौरसिया और दिनेश, आप सभी की फरमाइश हमने पूरी की। इसके साथ ही कार्यक्रम मन चाहे गीत संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सागर है, आइए सुनते हैं गांधी चर्चा, वाचक स्वर जयशेखर का।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना, सबेरा हुआ मौत ना आई, फिर भी उस समय जीने की आशा ना बांध सका और ये समझकर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर बन सका उतनी देर तक साथियों से गीता पाठ सुनने में लगा रहा। कामकाज करने की कोई शक्ति रही ही नहीं थी, पढ़ने जितनी भी शक्ति नहीं रह गई थी, किसी के साथ बात करने की भी इच्छा ना होती थी, थोड़ी बात करने से दिमाग थक जाता था, इस कारण जीने में कोई रस ना रह गया था। जीने के लिए जीना मुझे कभी पसंद नहीं आ रहा था। बिना कुछ कामकाज किए साथियों की सेवा लेकर क्षीण हो रहे शरीर को टिकाए रखने में मुझे भारी उकताहट मालूम होती थी। और अब इससे आगे, यूं तो मैं मौत की राह देखता बैठा था, इतने में डॉक्टर तलवलकर एक विचित्र प्राणी को लेकर आए। वे महाराष्ट्री हैं, हिंदुस्तान उन्हें पहचानता नहीं। मैं उन्हें देखकर समझ सका था कि वे मेरी ही तरह चक्रम हैं। वे अपने उपचार का प्रयोग मुझ पर करने के लिए आए थे। उन्हें डॉक्टर तलवलकर अपनी सिफारिश के साथ मेरे पास लाए थे। उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का अध्ययन किया था, पर वे डिग्री नहीं पा सके थे। बाद में मालूम हुआ कि वो ब्रह्म समाज जी हैं। नाम उनका केलकर है, बड़े स्वतंत्र स्वभाव के हैं। वे बर्फ के उपचार के बड़े हिमायती हैं। मेरी बीमारी की बात सुनकर जिस दिन वे मुझ पर बर्फ का अपना उपचार आजमाने के लिए आए, उसी दिन से हम उन्हें आइस डॉक्टर के नाम से पहचानते हैं। अपने विचारों के विषय में वे अत्यंत आग्रही हैं। उनका विश्वास है कि उन्होंने डिग्रीधारी डॉक्टरों से भी कुछ अधिक अच्छी खोजें की हैं। अपना ये विश्वास वे मुझ में पैदा नहीं कर सके, ये उनके और मेरे दोनों के लिए दुख की बात है। मैं एक हद तक उनके उपचारों में विश्वास करता हूँ।

मेरा ख्याल है कि कुछ अनुमानों तक पहुंचने में उन्होंने जल्दी की है, पर उनकी खोजें योग्य हों अथवा अयोग्य हों, मैंने उन्हें अपने शरीर पर प्रयोग करने दिए। मुझे बाह्य उपचारों से स्वस्थ होना अच्छा लगता था, सो भी बर्फ के अर्थात पानी के, इसलिए उन्होंने मेरे सारे शरीर पर बर्फ घिसनी शुरू की। इस इलाज से जितने परिणाम की आशा लगाए वे बैठे हुए थे, उतना परिणाम तो मेरे संबंध में नहीं निकला। फिर भी मैं रोज मौत की राह देखा करता था, अब मरने के बदले कुछ जीने की आशा रखने लगा। मुझ में कुछ उत्साह पैदा हुआ। मन के उत्साह के साथ मैंने शरीर में भी उत्साह का अनुभव किया। मैं कुछ अधिक खाने लगा, रोज 5-10 मिनट घूमने लगा। अब उन्होंने सुझाया, अगर आप अंडे का रस पिएं तो आप में जितनी शक्ति आई है उससे अधिक शक्ति आने की गारंटी मैं दे सकता हूं। अंडे दूध के समान ही निर्दोष हैं, वे मांस तो हरगिज नहीं हैं। हर एक अंडे में से बच्चा पैदा होता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनसे बच्चे पैदा होते ही नहीं, ऐसे निर्जीव अंडे भी काम में लाए जाते हैं। इसे मैं आपके सामने सिद्ध कर सकता हूं, पर मैं ऐसे निर्जीव अंडे लेने को भी तैयार ना हुआ। फिर भी मेरी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी और मैं आसपास के कामों में थोड़ा थोड़ा रस लेने लगा। मित्रों ने सलाह दी कि माथेरान जाने से मेरा शरीर शीघ्र पुष्ट होगा, इसलिए मैं माथेरान गया, किंतु वहां का पानी भारी था, इसलिए मेरे शरीर के रोगी के लिए वहां रहना कठिन हो गया। पेचिस के कारण मैं बहुत कमजोर हो गया, इससे कुछ भी खाते हुए डर लगता था। एक हफ्ते में माथेरान से वापस लौटा। मेरी तबीयत की हिफाजत का जिम्मा शंकरलाल बैंकर ने अपने हाथ में लिया था। उन्होंने डॉक्टर दलाल से सलाह लेने का आग्रह किया। डॉक्टर दलाल आए, उनके तत्काल निर्णय करने की शक्ति ने मुझे मुग्ध कर लिया। वे बोले, जब तक आप दूध ना लेंगे मैं आपके शरीर को फिर से हष्ट पुष्ट ना बना सकूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन, और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन, वाचक स्वर था जय शेखर का। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 MHz पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
2: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
3: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
4: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू

0: विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
1: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
0: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला AI सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जय

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते

0: हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं बच्चा सिंह और साथियों से ये कजरी।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स

0: बने रहेंगे।
1: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: अब सुनते हैं मगनलाल प्रजापति से ये कजरी।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए जयंत विश्वकर्मा, बच्चा सिंह और मगनलाल प्रजापति और उनके संगीत साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं नाटक एक पेड़ एक बच्चा एक परिवार। लेखक हैं मलार कोडली सुकुमारन और प्रस्तुति सुदर्शन कुमार की।
1: आज प्रस्तुत है मलर कोडी सुकुमारन के तमिल नाटक का

0: वसंती के साथ कौन है?
1: क्या बात है सिस्टर,
2: हम लोग वसंती के साथ हैं। वसंती ठीक है ना सिस्टर?
0: बधाई हो, लड़की हुई है।
1: अच्छा, हे जगदम्बे, हे माता, तेरी कृपा अपार है। शुक्रवार के दिन साक्षात माँ लक्ष्मी आई है हमारे घर में, जैसे परी उतर आई हो आसमान से। डॉक्टर डॉक्टर, क्या मैं मुन्नी को देख सकता हूँ?
0: बड़े शौक से, पर हाँ, बच्ची को उठाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए।
2: डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? क्या उसे कुछ खाने को दे सकते हैं?
0: हाँ, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे चाय कॉफी दूध दे सकते हैं, पर ज्यादा गर्म ना हो। सिस्टर,
3: यस डॉक्टर,
0: मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, पेशेंट को टाइम पर दे देना, ओके?
3: जी,
0: नाउ एवरीथिंग इज ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना।
3: ठीक है डॉक्टर।
2: बधाई हो समधी जी।
1: आपको भी समधन जी, आप भी तो नानी बन गई है। आइए आइए, पोती के दर्शन करें।

0: बधाई हो महालिंगम जी।
1: अरे आइए आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए
2: आइए। ब्रह्मदामन जी, बहू कहाँ है?
0: बहू भी आ रही है, वो देखिए।
2: अच्छा अच्छा, पीछे आ रही है। अरे राजू, तू इतना बड़ा हो गया।
0: बहन जी, बच्चों को बड़े होते कितनी देर लगती है,
2: तो है।
0: देखना, आपकी मुन्नी भी पला झपकती श्यामी हो।
1: अरे बधाई हो, बधाई हो महालिंगम जी। आइए आइए गणेशन साहब, आइए आइए आइए।
3: भाई पोती का नाम क्या सोचा है?
1: अजी सोचना क्या जी, जब नर्स ने खबर दी उसी पल मैंने तय कर लिया था कि हमारे घर की महालक्ष्मी है ये।
4: वाह वाह,
1: देखो ना, 6 पीढ़ियों से हमारे घर कोई लड़की नहीं हुई
3: जी।
1: भगवान का लाख लाख धन्यवाद, इस बार लड़की हुई है चांद से, वो भी शुक्रवार के दिन।
0: यानी सचमुच महालक्ष्मी है।
2: बहुत बहुत बधाई हो।
5: पिताजी।
1: हाँ बेटे प्रभु।
5: सब तो आ गए हैं, बोलिए क्या नाम रखना है मुन्नी का?
2: हाँ पिताजी।
1: अरे कितनी बार पूछोगे तुम, एक बार बता दिया ना, हमारी मुन्नी का नाम होगा महालक्ष्मी।
5: महालक्ष्मी?
1: भाई मेरा नाम महालिंगम और तुम्हारी माँ का नाम लक्ष्मी, दोनों मिलकर पोती का नाम बन गया महालक्ष्मी।
2: पिताजी आप बहुत ही चतुर हैं। पोती के नाम का आधा हिस्सा आपका हो, इसी ख्याल से महालक्ष्मी नाम रखा है आपने।
1: अरे बहू तुम आधे की बात कर रही हो। अरे मेरा तो जो कुछ भी है सब मेरी पोती का है।
5: पिताजी मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ, आपने मेरी भी छुट्टी कर दी।
1: भाई छुट्टी उट्टी की बात तो मैं नहीं जानता, हाँ इतना जरूर है कि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो मेरी पोती से मांग कर ले। देखो देखो देखो देखो, मेरी मुन्नी, मेरी लाडली। देखो कैसे मुस्कुरा रही है।
2: संधी जी संभाल के इस तरह मुन्नी को ना उठाइए। अरे बहुत नाजुक है, लाइए लाइए लाइए से मेरी गोद में। अरे माना कि आपको इस पर बेहद प्यार है, पर लाड प्यार करने का भी तो कोई तरीका होता है। माँ अब मुझे दो ना।
5: पिताजी महालक्ष्मी नाम तो अच्छा है, पर प्यार से पुकारने के लिए कोई मॉडर्न नाम बताइए ना।
2: प्रिया कैसा रहेगा? नहीं माँ, वो तो आजकल बहुत पुराना हो गया है, स्कूल में मेरे साथ 4 प्रिया पढ़ती थी। माँ मुन्नी सो गई है क्या? हाँ माँ, लो इसे पालने में सुला दो। अच्छा और देखो जी, कभी फैन इस तरह ना रखना कि हवा सीधे मुन्नी के मुंह पर पड़े।
6: अच्छा
2: अरे जरा एक तरफ घुमा कर रखो। और सुनो सुनो
6: जी,
2: वो पाँव पर महीन कपड़ा ओढ़ा दो।
6: माँ ओढ़ाती हूँ, पर ये नटखट लात मारकर हटा देती है। अब ये देखो माँ, कपड़ा ओढ़ा तो कैसे

0: छोटा करने
1: अरे अरे देखो तो देखो कितना गुस्सा आ रहा है चंडी रानी को। अरे भाई उसे अच्छा नहीं लगता तो कपड़ा हटा दो, क्यों तंग करती हो बेचारी को।
0: ये खूब रहा बच्ची को पालने का तरीका। समधी जी लड़की है लड़की, याद रखिए। हाँ।
1: क्यों क्यों क्यों लड़की हुई तो क्या हुआ? अरे लड़की और लड़के के लिए क्या अलग अलग कानून होते हैं? लड़की हुई तो क्या उसे हमेशा दब कर रहना चाहिए? अरे तुम लोग देखते रहना, मैं अपनी पोती को झांसी की रानी की तरह पालूंगा। वो सड़क पर चलेगी तो लोग उसके साए से भी डरेंगे। क्या मजाल कि कोई उसकी तरफ आंख भी उठा कर देख सके।
0: मैंने भी अपनी इकलौती बेटी को इसी तरह पाला था समधी जी।
2: तो अब आपकी बेटी को किस बात की कमी है? इस घर की रानी बनी हुई है।
3: ठीक है ठीक है, बात कहीं और निकली जा रही है। मुन्नी को पुकारने के लिए झटपट एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट कर दीजिए। हाँ
2: अभिलो अब अच्छा सा नाम सेलेक्ट।
3: जल्दी सोचिए।
2: मृदुला मृदुला मृदुला, रेशम से मुन्नी के लिए ये नाम कितना अच्छा रहा।
1: अरे भाई ये कहाँ कोई मॉडर्न नाम है।
3: पिताजी उद्या कैसा रहेगा?
4: अरे शाबाश, जवाब नहीं तुम्हारा, सुंदर अति सुंदर उद्या।
1: अति भाई ठीक है, इसका बहुत शुभ नाम। हाँ इसका उदया नाम बिल्कुल सार्थक है। इस घर में लगभग 28 वर्ष के बाद मुन्नी का उदय हुआ है। उदया उदया बिटिया, क्या तुम्हें ये नाम पसंद है? है? है? देखो देखो देखो देखो नींद भी मुस्कुरा रही है, मतलब ये कि उसे उदया नाम बहुत पसंद है इसे। हाँ उदया। अच्छा भाई एक मिनट, अब आप लोग मेरे साथ आइए, जरा बगीचे में चलते
3: हैं। अरे बगीचे में क्यों? हाँ बगीचे में क्यों?
2: दरअसल बात यह है पार्वती चाची कि हमारे दादा परदादा के समय से ही परिवार में एक रीत चली आ रही है, जब कोई घर में कोई शुभ कार्य होता है ना तो उसकी याद में एक पेड़ लगाया जाता है।
3: पेड़?
0: अरे वाह ये तो बहुत अच्छी प्रथा है। अरे हमारे गाँव में भी जब कभी कोई शादी होती थी तो दुल्हा दुल्हन एक साथ जाकर नदी किनारे पौधा लगाते थे। पर क्या करें आजकल ऐसी प्रथा को मानता कौन है? किसके पास समय है आजकल इस काम
1: के? अरे पार्वती लोग अच्छी प्रथाओं को भूल जाते हैं और फिर रोते हैं कि बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है। पेड़ को काटने से एक दो दिन तो पेट भर सकता है, पर मनुष्य ये कभी नहीं सोचता कि इससे कल क्या होगा।
0: आपके कहना बिल्कुल सही है, पर आजकल कौन सुनता है समधी जी। और एक बात है, सिर्फ हम ही निष्ठा से उसका पालन करें तो क्या होने वाला है?
2: मुश्किल ये है कि हर कोई सोचता है कि सिर्फ मेरे ऐसा करने से क्या होगा, और नतीजा कि कोई कुछ नहीं करता। हर एक को सोचना चाहिए कि दूसरे लोग करें ना करें, मैं जरूर करूँ। हाँ, तो तब तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाए।
1: हाँ हाँ, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रभु बिल्कुल ठीक कहता है। अब इस घर को ही लीजिए, जब मेरी शादी हुई तो मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये जामुन का पेड़ लगाया। अब मेरी पत्नी नहीं रही, पर मैं जब कभी इस पेड़ को देखता हूँ मुझे उसकी याद आ जाती है।
5: अच्छा, ये तो बड़े राज की बात बताई आपने।
1: बड़े प्यार से वो इसे पानी देती थी। पहले पहल जब इसमें फूल निकला तो मेरी पत्नी भी फूल की तरह मुस्कुराई। और एक दिन जब बाहर से कोई बकरी बगीचे में घुसकर जामुन के पत्ते खा गई तो लक्ष्मी इतना रोई कि उसे शांत करना मुश्किल हो गया। जानते हैं जब इस पौधे में दोबारा पत्ते निकले तभी लक्ष्मी के चेहरे की मुस्कुराहट लौटी।
2: गणेशन साहब।
6: जी बेटा।
2: ये जो पेड़ आप देख रहे हैं?
6: जी हाँ।
2: इसे हमने बाबूजी और माँ की शादी की 25वीं सालगिरह पर
6: लगाया। वाह, मतलब पूरा परिवार ही वृक्षारोपण का महत्व समझता है।
0: तभी तो ये बगीचा इतना हरा भरा है।
3: माँ, जब अड़ोस पड़ोस के लोग पैसों के लालच में अपने घरों को फ्लैट बनाने वालों को बेचने लगे और उनके आंगन में खड़े पुराने पेड़ काटे जाते तो पिताजी रो पड़ते थे, खाना तक नहीं खाते थे।
2: और जानते हैं एक दिन एक दलाल हमारे यहाँ आकर बोला, बाबूजी आप ये पुराना घर बेच दीजिए, हम यहाँ पर फ्लैट बना देंगे, आपको नगद 25 लाख रुपए, साथ में एक मॉडर्न 2 बेडरूम वाला फ्लैट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। बस ब्रोकर का इतना ही कहना था कि बाबूजी उस पर टूट पड़े, वो हम सब मिलकर उन्हें ना रोक

0: होते तो शायद उसकी जान ही ले लेते। और उसके बाद किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि घर खरीदने की बात करे। पर हाँ, जब कभी मैं सड़क पर जाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि वो देखो पागल जा रहा है, पर मैं किसी की परवाह नहीं करता।
1: अरे इसी का नाम दुनिया है भाई साहब, इसी का नाम दुनिया है। रुपए पैसे के लिए जहाँ मनुष्य माँ बाप भाई बहन सभी से नाता तोड़ देता है, वहाँ पेड़ पौधों को इंसान के रूप में देखने वाले आप एक अजीब मनुष्य ही माने जाएंगे। छोड़िए इस बात को, अब आप ये बताइए अपनी पोती के लिए कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं?
0: बताओ कौन सा पेड़ लगाने वाला हूँ मैं? इसके लिए ये नीम का पौधा लगा रहा हूँ।
2: नीम का?
0: हाँ, नीम का पौधा। इस नीम को लोग शक्ति माता का रूप मानते हैं। नीचे जड़ से लेकर फूल पत्ते बीज गुठली हर भाग एक अनमोल दवा है।
3: लेकिन पिताजी, अक्सर नीम का नाम लेते ही कड़वेपन की याद आ जाती है।
4: हाँ पिताजी।
0: पर जानते हो ये कैसा कड़वापन है?
4: कैसा?
0: बुरेपन को मिटाने वाला कड़वापन।
4: हाँ।
0: जहर को तोड़ने वाला कड़वा होता।
4: अच्छा।
0: है जानते हो नीम के पेड़ की छाया कितनी शीतल होती है
3: जी।
0: हाँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती भी बड़ी होकर अच्छी पढ़ाई पाकर जैसे नीम का पेड़ कड़वेपन को अपने अंदर रखकर बाहर ठंडक फैलाता है, उसी तरह बुराई का सर्वनाश करने की शक्ति को अंदर छिपाकर बाहर सबसे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पेश आए। इसी आशा से मैंने नीम का पेड़ लगाने का फैसला किया है।
3: जवाब नहीं पिताजी आपका भी। पहले तो मैं भी सोच रहा था कि ये क्या मुसीबत है, यहाँ लड़की हुई है और आप नीम का पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई।
0: बेटा
3: जी,
0: ये जो पेड़ मैंने तुम्हारी शादी के समय लगाया था उससे 10 फुट की दूरी पर ये जो गड्ढा मैंने खोदा है, इस नीम के पौधे को तुम दोनों खुद अपने हाथों से लगा दो इसमें। आओ बहू बसंती, चलो चलो प्रभु
4: जी।
0: लो बेटा लगाओ लगाओ, मट्टी डालो, पानी डालो भाई। हाँ, शाबाश।

0: की? आप रेडी है ना? आंखों पर कपड़ा बांधू?
1: अरे रे रे बिटिया, कपड़े वपड़े की जरूरत नहीं, मैं आंखें जोर से बंद कर लेता हूँ, हाँ कसम से देखूंगा नहीं
0: है? वो सब नहीं चलेगा, आप झूठे प्रॉमिस करते हैं। आंखें बंद करने के नाम पर कौवे की तरह आंखों के कोने से देखते हैं।
1: अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। लो मैंने आंखें बंद कर दी, जोर से अधर चुप जाओ है। याद रखना आम के पेड़ पर चढ़ना नहीं, तुम्हारे बाबू ने देख लिया तो मुझे ही डांटेंगे।
0: ठीक है दादाजी झूठो।
1: अरे कहाँ गई, कहाँ गई हमारी जिया बिटिया? यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। अरे इस तरह देखते हैं, अरे यहाँ भी नहीं है। भाई बस मैं तो हार गया, तुम जीती उदिया, मुझसे अब चला नहीं जाता भाई। आ जाओ उदिया।
0: दादाजी।
1: चलो उस आम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा।
0: मुझे नहीं सुननी कोई कहानी वानी।
1: क्यों?
0: बार बार वही घिसी पिटी कहानी सुनाओगे, कौआ और लोमड़ी, राजा और रानी, या फिर राक्षस और लाल परी। मैं तो बोर हो गई।
1: अरे क्यों?
0: ये क्या दादाजी, आप भी मेरे साथ नहीं खेलते? पापा और माँ तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं किसके साथ खेलूं?
1: तुम?
0: मेरी क्लास में जो मनीषा है ना, उसका एक भाई है, सुरेश की एक बहन है, एलसी की एक बड़ी बहन है, पर मैं तो अकेली ही हूँ।
1: अरे ये क्या कह रही हो बिटिया, तुम्हारी भी तो एक दीदी है।
0: मेरी दीदी?
1: हाँ ये देखो ये नीम का पेड़, यही तो तुम्हारी दीदी है। है ना तुमसे थोड़ी ऊंची, इसके साथ खेलो तुम, ये तोता मैना चिड़िया सबसे तुम्हारी दोस्ती करा देगी। हाँ और झूला लगाकर तुम्हारे संग खेलेगी। ऐसी दीदी और किसी को नहीं मिलेगी बेटी।
0: सच दादाजी?
1: हाँ।
0: क्या ये मेरे साथ बात करेगी?
1: क्यों नहीं करेगी,

0: कुछ कहोगी तो ये भी तुमसे बात करेगी, तुम पानी डालो तो ये तुम्हारी तरफ झुकेगी।
1: आप झूठ बोलते हो, क्या कभी पेड़ भी कुछ बोलता है?
0: रे रे रे, अरे भाई जब हवा में पेड़ हिलता है तो आवाज आती है ना, वही तो उसकी बोली है। ए, जब तुम बड़ी होगी तब खुद ही समझ जाओगी।
1: सच दादा जी?
0: हाँ।
1: जब मनीषा पहले पहल तमिल में कुछ कहने लगती थी ना,
0: हाँ?
1: तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी।
0: ओह,
1: और वो हिंदी में ही समझ पाती थी।
0: हाँ?
1: पर अब हम दोनों दोस्त हो गए, हम एक साथ खेलते हैं।
0: अच्छा, अब तुम दोनों किस भाषा में बातचीत करते हो, तमिल में या हिंदी में?
1: वो तमिल में बोलती है और मैं हिंदी में।
0: पर बेटी तुम तो तमिल नहीं जानती।
1: और उसे हिंदी नहीं आती।
0: तो फिर तुम एक साथ कैसे खेलते हो?
1: बस वैसे ही, मैं हिंदी में कुछ कहूँगी तो वो तमिल में जवाब देगी।
0: अच्छा।
1: फिर हम दोनों हाथ में हाथ मिलाकर खेलने चले जाएंगे।
0: अच्छा।
1: अगर हमें झगड़ा हुआ तो मैं हिंदी में कुछ कहूँगी और वो तमिल में कुछ कहेगी। दोनों में कुट्टी।
0: ओहो।
1: थोड़ी देर बाद दोनों में दोबारा दोस्ती हो जाएगी। हंसने का मतलब गुस्सा गायब।
0: अच्छा,
1: अच्छा दादाजी।
0: हाँ?
1: क्या ये नीम का पेड़ भी मुझसे इसी तरह बात करेगा?
0: जरूर बेटी, जरूर करेगा।
1: आप यही रुको दादाजी, मैं दीदी के पास जाकर अपने स्कूल की बातें बताकर आती हूँ।
0: अच्छा अच्छा ठीक है। आजकल के बच्चे कितने होशियार हैं, एक बार कहो तो झट से समझ जाते हैं। हे भगवान, तो इन सब की रक्षा करना।

0: लेकिन अब क्या नई बात हो गई है? मुझे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तुम्हारे पिताजी घर पर रहते हैं, उदया बड़ी हो गई है, अब स्कूल जाती है, और फिर नौकरानी है ना, उसे संभालने के लिए।
1: ओहो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारी 2-3 हजार की तनख्वाह के लिए जानती हो मैं क्या क्या खोना पड़ रहा है। घर में भी काम करती हो, दफ्तर में भी, और एकदम थक जाती हो। शाम को मुन्नी प्यार से तुम्हारे पास आती है तो उस पर चिढ़ती हो, उसे भगा देती हो। देखो, पिताजी की पहले जैसे तबीयत नहीं रही, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसीलिए उदय की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते वो। देखा, इस बार इम्तिहान में कितने मार्क्स मिले हैं उसे? 3 विषयों में वो फेल है।
0: वो तो आजकल बहुत घमंडी हो गई है, मेरी तो परवाह ही नहीं करती, और ये सब तुम्हारे और पिताजी के लाड़ प्यार का नतीजा है।
2: माँ, मुझे नींद आ रही है, जरा बत्ती बुझा दो।
0: अरे नींद आती है तो सो जाना चुड़ैल, आंखें बंद कर ले।
2: पापा, मम्मी से कहो चुप हो जाए, बहुत गुस्सा करती है, मुझे नींद आ रही है।
1: आओ बेटी, तुम मेरी गोद में आ जाओ, मैं सुलाता हूँ तुम्हें।
0: 8 साल की हो गई है, ताड़ के पेड़ की तरह, और तुम उसे लोरी सुना रहे हो। ए उदया, चल वहां जाकर सो जा।
2: तुम्हारी गोद में थोड़ी लेती हूँ, मैं तो अपने पापा की गोद में लेती हूँ।
0: बकवास बंद कर, एक थप्पड़ लगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे।
1: अगर तुमने मुन्नी को छुआ तो हाथ तोड़ के रख दूंगा तुम्हारा।
0: क्या?
1: मुझ पर का गुस्सा मुन्नी पर क्यों निकाले? कान खोल कर सुन लो, कल से तुम नौकरी छोड़कर घर की और मुन्नी की देखभाल करोगे। घर के कामों के लिए नौकरानी रखना, खाना बनाने के लिए बावर्ची ले आना, ट्यूशन के लिए मास्टर रखना, ये सब बातें भूल जाओ। अगर सारे काम के लिए काम वाले रख लोगी तो तुम्हारा यहाँ क्या काम?
0: क्या?
1: मुझे ऐसी पत्नी की जरूरत नहीं है। तुम जो 2-3 हजार कमा कर लाती हो वो तो बस तुम्हारे बस ऑटो सारे में ही खर्च हो जाते हैं। सीधे तरह नौकरी से इस्तीफा देकर आओ।
0: तुम समझते हो कि मर्द जो भी कहे उसे सह लेना औरत का धर्म है? सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, घर की देखभाल करो, तो क्या तुम चुपचाप सुन लोगे?
1: क्या कहा तुमने?
0: अच्छा, तो अब मुझ पर हाथ भी उठाने लगे? अरे क्या समझ रखा है तुमने मुझे, घर की नौकरानी, तुम्हारी गुलाम? अब तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है, मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ।
1: रोकता कौन है तुम्हें, हमेशा के लिए चली जाओ, मैं समझूंगा पला चल, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मुन्नी मेरे साथ रहेगी, उसके लिए तुम्हारे साथ रहना ना रहना दोनों बराबर है।
0: ये बात है, मैं भी देख लेती हूँ।
1: क्या कर लोगी तुम, मुझे धमकाने की कोशिश करती हो?
2: मम्मी से झगड़ा ना करो पापा, प्लीज, मुझे डर लग रहा है, मैं मम्मी के पास सो जाती हूँ। मम्मी मम्मी चुप हो जाओ,

0: उद्या उद्या सुन, क्या है प्रीति? सुना है तुम्हारे मम्मी डैडी डाइवोर्स लेने वाले हैं।
1: डाइवोर्स का मतलब?
0: नहीं जानती।
1: नहीं?
0: मतलब कि दोनों अलग अलग घर में रहेंगे।
1: अलग अलग घर में?
0: हाँ, और तुम्हें उनमें से किसी एक के साथ रहना होगा। माँ के साथ रहना है तो डैडी को छोड़ना होगा, डैडी के संग रहना है तो मम्मी से दूर रहना होगा। कोर्ट में वो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम किसके साथ रहना चाहोगी।
2: तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें ये सब कैसे मालूम?
0: मैंने एक पिक्चर में देखा था।
2: वो सब झूठ था।
0: अरे नहीं, बिल्कुल सच था। उद्या सुन,
1: क्या है?
0: तुम्हारे मम्मी डैडी के डाइवोर्स के बाद मैं तुमसे कुट्टी कर दूंगी।
1: क्यों?
0: अगर मैं तुमसे दोस्ती रखूंगी तो मेरी माँ मुझे डांटेंगी।
3: उद्या, आपकी मम्मी रिपोर्ट कर लेने क्यों नहीं आई?
4: वो उनकी दफ्तर में काम बहुत है मैडम।
3: ना जाने कैसा काम होता है। अपनी बच्ची की बिल्कुल भी चिंता नहीं। मैंने सुना है कि आपके
4: मेरे दादा जी बीमार है मैडम।
3: अरे वो नहीं, सुना है कि तुम्हारे मम्मी और डैडी के बीच झगड़ा हो गया है, वो डाइवोर्स ले रहे हैं।
4: नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम।
3: उद्या, अरे उद्या सुनो तो।
4: चुप क्यों हो दादाजी, कुछ तो बोलो।
5: क्या बोलूं बेटी, तुम्हारी माँ तो सब कुछ बोलती जाती है, ना जाने उसका दिमाग क्यों फिर गया है।
4: मेरी मम्मी को कुछ मत कहो दादाजी, प्लीज।
5: वाह, तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कहूँ तो तुम रो पड़ती थी। देखो देखो अब कैसे घूर रही है मुझे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जाओ जाओ अपना काम करो।
6: उद्या, तुम?
4: हाँ नानी।
6: स्कूल छूटने के बाद यहाँ सीधे आ रही है?
4: हाँ नानी।
6: जाओ, तुम्हारे दादाजी ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। अगर उस बूढ़े को पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो सारा मोहल्ला सर पे उठा लेगा। जाओ अपने घर।
4: आप दादाजी को बुरा भला क्यों कहती हो?
6: लो और सुनो, दादाजी के बारे में कुछ कहो तो पोती को कितना गुस्सा आता है। अरे तुम्हारा दादा ही तो मेरी बेटी का घर उजाड़ रहा है, बेटे को तो हमेशा कुछ उल्टा सीधा पढ़ाता रहता है, और वो गोबर गणेश बाप के इशारे पर नाचता है।
4: मेरे दादाजी और पापा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुमसे मेरी कुट्टी।
6: जाओ जाओ, जैसा बाप वैसी बेटी। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। हाय राम, मेरी बेटी की किस्मत ही फूटी है तो किसको दोष दूं।
4: नीम पेड़ दीदी, मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मम्मी और पापा में झगड़ा हो गया है ना, इसलिए स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते। दादाजी भी पहले की तरह मेरे साथ प्यार से नहीं खेलते। नानी जी भी बदल गई हैं। नीम दीदी, मुझे माँ पापा दादा नानी सब लोग चाहिए। तुम एक जगह खड़ी हो, तुम चल नहीं सकती, इसलिए क्या तुम्हें अपने पास रखकर मुझे मम्मी के साथ नानी के घर भेज देंगे ये लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मुझे सब लोग चाहिए, मुझे सारे लोग चाहिए।
7: उद्या, उद्या बेटी, अरे क्या कुछ सपना देखा तुमने? अरे क्यों रो रही है मेरी लाडली? देखो सुबह हो गई है, स्कूल जाना है ना, जल्दी से उठो बेटा।
8: ये देखो रानी बिटिया के लिए नया टूथ ब्रश पिंक कलर का है ना सुंदर।
9: चलो चलो चलो, उठो उठो उठो जल्दी।
10: हाँ,
9: चलो।
10: तो क्या बेटी जागी है नहीं?
4: डाइवोर्स ले रहे हैं।
5: डाइवोर्स? ये सवेरे सवेरे क्या मनुष्य शब्द बोल रही है, किसने सिखाया तुम्हें ये सब?
4: दादाजी, रात को पापा ने मम्मी को मारा और कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। मैं तो एकदम घबरा गई। दादाजी रोते रोते सो गई ना, बुरे बुरे सपने आए, और उसमें आप नानी टीचर मेरे दोस्त लोग कोई भी मुझसे

0: सुबह सुबह कहानी सुनने के लिए जाकर बैठ गई दादाजी की गोद में?
1: नहीं बेटा, इसकी कहानी मैं सुन रहा हूँ। बहुत दिलचस्प कहानी है प्रभु
0: जी।
1: पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर आपे से बाहर होकर छोटी बच्ची के सामने पत्नी पर हाथ उठाना कितने

0: एक पेड़, एक बच्चा, एक परिवार। अभी आप मलरकोडी सुकुमारन के तमिल नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवादक थे श्री एमएस विश्वनाथन विश्वकमल। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम मैनी, अश्विनी कुमार, हर्ष बाला, ललिता शंकर, मधु मालती, हेमेंद्र नाथ, राजेंद्र वर्मा, नीरू अग्रवाल, पूनम श्रीवास्तव, पायल भारती, मीना श्रीवास्तव और पल्लवी भारती। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक एक पेड़, एक बच्चा, एक परिवार। लेखक थे मरार कोडली सुकुमारन और प्रस्तुति थी सुदर्शन कुमार की। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों का कारवां। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक मिलिंद देवस्कर से जय शेखर की बातचीत। 10:30 से आपकी पसंद कार्यक्रम होगा और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 11:00 से। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। 9:00 को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर। और आज है नारियली पूर्णिमा। महाराष्ट्र में विशेष रूप से समुद्र तट से जुड़े समुदायों का महत्वपूर्ण पर्व है नारियली पूर्णिमा। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन समुद्र और भगवान वरुण की पूजा कर नारियल अर्पित किया जाता है तथा सुरक्षित समुद्री यात्रा और अच्छी आजीविका की प्रार्थना की जाती है। लक्की फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अदनान सामी के स्वरों में। समीर के बोल, अदनान सामी का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की

0: बाद और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए

कबीर सिंह इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। इरशाद कामिल के बोल सचेत परंपरा की बनाई धुन।

0: श्रोताओं, बलभद्र पूजा मुख्य रूप से भगवान बलभद्र यानी बलराम की आराधना का पर्व है। बलराम जी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति, पराक्रम, कृषि तथा धरती से जुड़े जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त बलभद्र जी की पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बलराम जी का हल उनका प्रमुख प्रतीक है, इसलिए यह पर्व कृषि, श्रम और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त एक अंतराल का।

चित्रलोक। अब आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल, इस फिल्म का गीत मीट ब्रदर्स और अल्तमश फरीदी की आवाजों में। शब्बीर अहमद के बोल हैं और धुन बनाई है मीट ब्रदर्स ने।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं पीकू फिल्म से गीत। इस गीत के संगीतकार, गीतकार और गायक कलाकार अनुपम रॉय हैं।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं जुग जुग जियो इस फिल्म से। तनिष्क बागची और जहरा एस खान की आवाजें हैं। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची।

जुग जुग जियो इस फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बधाइयां और आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: नहीं नहीं

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं, और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषिदा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषिदा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। सो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषिदा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।

पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सब।

0: कभी तो हंसाए।
1: ऋषिदा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुरी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: कशीदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में ऋषिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने ऋषिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में ऋषिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

ऋषिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में

मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपना हरा ही चला जाए सपना।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता, निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी, वाचन स्वर शेख महजबी अलमास। गुना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात श्रमिकों और रोजगार की। गुना जिले में श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए डिजिटल लेबर चौक ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और नियोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार योग्य श्रमिक तलाश सकेंगे। निर्माण, कृषि और घरेलू काम सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस पर पंजीयन करा सकेंगे। श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में गुना जिले के 60 श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 1,33,00,000 रूपये की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए यह राशि हितग्राहियों के खातों में पहुंचाई है। यह सहायता असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के लिए आर्थिक संबल का माध्यम बनी है। अब बात किसानों की। गुना जिले में ई विकास प्रणाली 2.0 के जरिए ई टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था जारी है। किसानों को उनकी बोई गई फसल के अनुसार यूरिया, TSP, NPK और SSP उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान स्वयं एवं CAC सेंटर और खाद वितरण केंद्र के जरिए ई टोकन बुक कर सकते हैं। कृषक कल्याण की इस कड़ी में गुना के नानाखेड़ी मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि के साथ पशुपालन, उद्यानिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभराज की धनिया को जल्द GI टैग मिलने की उम्मीद है। अब बात महिला सशक्तिकरण की। लाडली बहना योजना के तहत गुना जिले की 2,27,114 बहनों के खातों में 39,13,00,000 रूपये से अधिक की राशि भेजी गई है। इसमें नियमित

0: इसके साथ रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राशि का अंतरण किया। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरोन में जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेला लगाया गया। मेले में 7 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 311 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 192 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ जबकि 164 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए। सामाजिक समरसता की दिशा में गुना जिले में गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान और यात्रा शुरू हुई है। 21 अगस्त से 10 सितंबर तक जिले के विभिन्न मार्गों पर कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसके जरिए समानता, बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव का संदेश लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुना जिले से रामेश्वरम की यात्रा 7 से 12 सितंबर तक प्रस्तावित है। यात्रा में जिले से 196 यात्री और 4 अनुरक्षक शामिल होंगे। इच्छुक लोग 1 सितंबर तक संबंधित नगर पालिका या जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगस्त और सितंबर महीने का खाद्यान्न एक साथ वितरित किया जा रहा है। इसका वितरण 31 अगस्त तक किया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों पर इसकी जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। खाद्यान्न लेते समय उपभोक्ताओं को 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में जल जनित संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। गुना की पूरी राजस्व सीमा का अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। हैजा, पेचिश, पीलिया और मस्तिष्क ज्वर जैसे रोगों की रोकथाम के लिए संयुक्त दल बनाया गया है। यह दल जांच, निगरानी और जरूरी कार्रवाई करेगा। अब बात गुना की बारिश की। 1 जून से 27 अगस्त तक जिले में औसतन 788.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश का करीब 75% है। गुना जिले में आज रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख और लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भाई भी बहनों को उपहार कर उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन कल भुजरिया पर्व भी उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत गुना जिले के मकसूदनगढ़ में कल 29 अगस्त को जन समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा। शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। नागरिक अपने आवेदन और जरूरी दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर समस्याओं के निराकरण का लाभ ले सकते हैं। और अंत में स्वतंत्रता दिवस की बात। गुना में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और गरिमा के साथ मनाया गया। लाल परेड ग्राउंड पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर जिले के विकास कार्यों, उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तक का भी वितरण किया गया। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर शेख महजबी अलमाज का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं यादों का कारवां। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं सेवानिवृत्त शिक्षक मिलिंद देवस्कर जी से जय शेखर की बातचीत, आइए सुनते हैं।

यादों का कारवां। नमस्कार श्रोताओं, यादों का कारवां, हम फिर आ पहुंचे हैं एक यादों के कारवां को लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। दोस्तों, जब भी बात शिक्षक की आती है, दुनिया के पवित्र कार्य के बारे में आती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई अगर इस दुनिया में कोई सबसे पुण्य वाला काम है और ऐसा काम है जो लोगों को सुकून देता है, शांति देता है। अब शिक्षक में भी अगर बात चले उन शिक्षकों की जो दूसरों की जिंदगी बनाने में अपनी जिंदगी की परवाह ना करें, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें छात्रों पर, छात्राओं पर, उन अनजाने स्कूल के बच्चों पर जिनको वो जानते ही नहीं है, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र उनके पास पहुंचता है कि सर हमें खेलों में ये परेशानी जा रही है, हमारे पास ये दिक्कत है, ये हमारे घर की परेशानी है, तो एक शिक्षक ऐसे हैं, खेल शिक्षक कहेंगे उनको, स्पोर्ट

0: शेर कहेंगे सागर शहर में, जो किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, और आज से तीन पीढ़ी पहले के व्यक्तियों में उनका नाम लीजिए तो हर व्यक्ति अपनी जगह से उठ जाता है, नमस्कार करता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और वो शिक्षक ऐसे हैं कि अभी भी सरेआम चौराहे पर अगर आपको मिल जाएं, आप उनके स्टूडेंट रहे हैं, तो आपका स्वागत वो करेंगे, आशीर्वाद देंगे एक प्यार भरी थपकी देकर। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं सागर शहर के जाने माने खेल प्रशिक्षक, खेल शिक्षक मिलिंद देवस्कर सर की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, आपका बचपन कहाँ बीता, बचपन में माता पिता की कौन सी यादें आज भी आपके जहन में कौनती हैं?
1: मेरा जन्म तो हुआ है सागर में ही
0: जी।
1: एजुकेशन, फिर मदर हमारी ललिता शास्त्री में शिक्षक थी, हमारे फादर जो हैं वो घुरई गुरुकुल स्कूल में अकाउंटेंट की पोस्ट पे रहे, तो हमारा पूरा एजुकेशन, स्कूलिंग एंड कॉलेजिंग पूरा घुरई में हुआ।
0: अच्छा अच्छा।
1: और उसके बाद फिर कॉलेज एजुकेशन के बाद एक साल बॉम्बे में हमने जॉब किया, तो उसमें हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया।
0: ये किस सन की बात होगी?
1: ये 1980 की।
0: 1980 की,
1: 80
0: जी।
1: एक साल ही किया, फिर वापस सागर आ गए। उसके बाद फिर शिवपुरी में फिजिकल ट्रेनिंग की
0: जी,
1: और 1984 में जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में जॉब मिला।
0: अच्छा अच्छा।
1: तब से सागर में ही हैं, 18 में हम रिटायर हो गए
0: जी,
1: 2018 में।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मदद माता पिता का तो ऐसा है कि वो तो कोई
0: बिल्कुल
1: बात ही नहीं है
0: जी,
1: तो एक एक पल पे याद आना बड़ी स्वाभाविक बात है।
0: अच्छा, उनकी कौन सी बात आज भी राह दिखाती है?
1: माता पिता का तो राह दिखाने वाला एक एक कदम होता है, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं
0: जी,
1: इसलिए। और माँ बाप से बढ़ के इस जीवन में कुछ है भी नहीं।
0: बिल्कुल।
1: आज जिस स्थिति में भी हम हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान माँ बाप का ही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर।
1: और उनके पुण्यों का जो सुख भोग रहे हैं हम, वो उसको बयां नहीं कर सकते
0: जी। सर, वैसे तो आप सारे खेलों के प्रशिक्षक के रूप में रहे हैं, लेकिन आपका सबसे ज्यादा जो रुचि रही है वो है टेबल टेनिस।
1: टेबल टेनिस,
0: तो टेबल टेनिस में आपके कितने छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर परचम लहराया?
1: स्टेट लेवल पर तो गिन भी नहीं सकते इतने बच्चे गए
0: जी,
1: नेशनल लेवल पर कुछ बच्चे गए।
0: अब
1: वो एक लंबा समय हो गया तो कुछ यादें भी नहीं है
0: जी।
1: उसमें हमारी एक मेन हमारी बिटिया भी है जिसने 6 नेशनल खेले,
0: अरे वाह,
1: 2 गोल्ड मेडल रहे उसके
0: जी जी जी,
1: टेबल टेनिस में SGFI के। बाकी कई स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, कॉलेज के भी हैं
0: जी,
1: तो अब उसमें हिसाब तो नहीं लगा सकते कि कितने होंगे।
0: अच्छा, ज्यादातर ये होता है कि शिक्षक जिस संस्थान में काम कर रहा होता है उसी संस्थान का होके रह जाता है, लेकिन आपके साथ ये बंदिशें क्यों नहीं रही?
1: एक्चुअली उसका कारण ये हुआ कि जब हमने 84 में ज्वाइन किया और हमने कुछ ऐसी चीजें देखी कि स्कूल में वो सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ आने के बाद हमने थोड़ा सा पुराने जो टीचर्स थे, अवस्थी जी, यादव
0: जी,
1: काफी खान साहब थे,
0: हाँ हाँ,
1: इन लोगों को सबको एक मीटिंग करके और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जिस स्कूल में जो सुविधाएं हैं,
0: हाँ हाँ,
1: उस सुविधा के अनुसार उन स्कूलों में वो उसकी कोचिंग दी जाए
0: जी।
1: तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन की सुविधा जैन स्कूल में हमने बनाई थी, तो शहर के पूरे बच्चे किसी भी वो जो भी अपने SGFI के लिए तैयार होते थे, वो पूरे बच्चे बैडमिंटन के और टेबल टेनिस के जैन स्कूल आते थे। एथलेटिक्स का है वो PTC ग्राउंड पे सब इकट्ठे होते थे
0: जी।
1: वॉलीबॉल के लिए भल्ला थे,
0: हाँ,
1: तो अपना ये म्युनिसिपल ग्राउंड था
0: जी,
1: वहाँ सब। तो ऐसे क्या है कि अब शहर के पूरे स्कूलों के बच्चे जब आएंगे,
0: हाँ,
1: और फिर होता क्या है कि बच्चों को जो टीचर अच्छे लगते हैं तो वो थोड़ी पब्लिसिटी भी होती है।
0: सही।
1: और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने बच्चों को जो ट्रीटमेंट देते थे, हमारे जो ब्लड है,
0: हाँ,
1: हमारे बच्चे हैं
0: जी,
1: हमने अपने बच्चों में और उन बच्चों में कोई डिफरेंस कभी नहीं।
0: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से यादों का कारवां, और हमारे साथ हैं हमारे सागर शहर

0: के जाने माने खेल प्रशिक्षक, टेबल टेनिस के जाने माने नाम खेल शिक्षक मिलिंद देवस्कर सर, उस तरफ भी जाना चाहेंगे कि बचपन की कौन कौन सी यादें हैं आपके साथ?
1: बहुत जबरदस्त से ज्यादा शरारती रहे और हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान रहे हमसे
0: जी।
1: उसके बीच में एक बात हम कहना चाह रहे हैं, सवाल किया था कि ये जो हमने अभी बताया था कि जो हम अपने बच्चों को समझते हैं, तो ये चीज जो है वो हमारे पेरेंट्स, ये सबसे बड़ा योगदान हमारे पेरेंट्स का रहा
0: जी।
1: ये योगदान हमारा पेरेंट्स का बहुत बड़ा रहा।
0: अच्छा अच्छा।
1: क्योंकि उन्होंने भी, हमने उनको उन्होंने जो स्कूल में जॉब किया, फादर अकाउंटेंट भले ही थे लेकिन फिर भी वो बच्चों की फीस भर देना, बच्चों को प्यार देना, जो ट्रीटमेंट हम लोगों के साथ रहता था वही ट्रीटमेंट उन बच्चों के साथ रहता था, ये हमारी विरासत में है। हमको मतलब ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा। हमारी माँ थी
0: जी,
1: घर घर जाके वो फ्री ट्यूशन करती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो ये विरासत में मिला हमें और यही सबसे बड़ी चीज जो विरासत में मिली है ये है। ये एक्चुअली हम बताना भूल गए थे।
0: जी जी जी जी।
1: तो उसके बाद अब जो पूछा, तो नोटोरियस तो हम बहुत थे।
0: अच्छा अच्छा। किस प्रकार की शरारतें करते थे?
1: शरारतें, मारपीट।
0: हाँ।
1: और स्कूल से गायब होना,
0: पेड़ों पे चढ़ना,
1: पेड़ों पे चढ़ना, किसी के भी बगीचे में घुस जाना,
0: फल तोड़ के खाना,
1: फल तोड़ना। वो एक गैंग हुआ करती थी स्कूल की।
0: जी जी।
1: तो वो रिसेस में हम लोग जनरली ये काम किया करते।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ।
1: तो और क्या है कि चूंकि हम शरारती रहे तो हमने यहाँ आने के बाद हम ये नहीं चाहते थे कि बच्चा बहुत सीधा रहे। जो बच्चे सीधे हैं वो कोई काम के नहीं।
0: सही कहा आपने।
1: बच्चे अगर शरारती नहीं है तो वो देउस्कर से उनकी ट्यूनिंग बनी नहीं सकती क्योंकि जो शरारती होते हैं वही आगे निकलते हैं
0: और उनमें करंट होता है।
1: करंट होता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल वही करंट
1: वो लाइफ रहता है। और सौभाग्य की बात यह है कि वो करंट आज भी हमारे जान में चल रहा है। लक।
0: जी सर, श्रोता हम आपको बता दें कि हमारे जो गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए देवस्कर सर आदरणीय, आपकी उम्र अभी 70 वर्ष से ऊपर हो रही है, ऐसे में फिटनेस हमारी आपकी से कहीं ज्यादा फिटनेस हमारे गुरुजी की है। तो गुरुजी हमें ये बताइए कि आपकी दिनचर्या क्या होती है और इस फिटनेस का राज क्या है, और आपकी जो हम उम्र है, और हम तो ये भी कहेंगे कि जो 50 से ऊपर के व्यक्ति हैं चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं?
1: इसमें रहस्य का कुछ भी नहीं है
0: जी।
1: एक्चुअली जब अपने को होश आया, जब अपन समझदार हुए, तब से एक डिसिप्लिन लाइफ शुरू की
0: जी।
1: और सबसे बड़ा जो उसके पीछे राज है वो एक डिसिप्लिन लाइफ है, रेगुलर लाइफ है। स्पोर्ट्स सुबह, जो सुबह से रूटीन शुरू होता है तो वो रात तक का रूटीन एक फिक्स है।
0: अच्छा अच्छा।
1: बाई चांस है कि कभी कहीं प्रोग्राम में जाना है, लेट हो गए हैं तो बाकी ग्राउंड जो है वो हमारे ब्लड में ही ये हुआ, और जब तक ग्राउंड नहीं हो तब तक हमारा दिन अच्छा निकलता भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि पॉजिटिविटी बहुत रखते हैं। देखिए क्या है कि जीवन में प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक कष्ट जो जीवन में है, अप डाउन लाइफ में आते
0: सभी
1: हैं,
0: के लिए है।
1: सभी के लिए है
0: जी।
1: उनका फेस अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आपकी विल पावर अच्छी है, पेशेंस है आपके अंदर
0: जी,
1: पॉजिटिविटी है, तो ये चीजें बहुत आपके जीवन में आपको आगे ले जाएंगी। और अब उसके लिए आपको बताएं, जैसे हम एम्ब्रॉयड मोबाइल नहीं रखते, ये अभी
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक है, साइड इफेक्ट बहुत है। और अगर इसकी लत लग जाए तो फिर आपका ये जो वर्कआउट वाला,
0: हाँ ये रुक जाता है,
1: ये रुक जाता है
0: जी।
1: और सोच हमारी बहुत पॉजिटिव है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अपने सारे अनुभवों के साथ हमारे गुरुजी जो बता रहे हैं आपको कि सोच अगर आपकी सकारात्मक है, हमने देखा है अपने गुरुजी के साथ, देखा है बहुत सारा वक्त बिताया है कि कभी भी कुछ भी हो जाए तो चेहरे पे शिकन नहीं आती थी, ना कभी कोई शिकायत, बस खुश रहना, जैसे एक अल्हड़ फकीर रहते हैं वैसे ही खुश रहना, और किसी के भी पीठ पर हाथ रखना, उसको गले से लगाना,